बास बास बास उबे के गई थे तेंगी ने ने हमें मेल का सरी न्यों वही चुकरो ले मी बास कागी ना हमें गु नौगे बच्चे नुआ गाप किता भूती हुए ए गोगा को या तू चोसे का पिसं कोरे तने घर आ रहा नहीं रीप कहेगी ने मैं नहीं अमु मगीर हुए आई आज तातु सब डिपो आज का सेरे न्यू अमेज़ा चेरे ना लेजी निकल सो कोरी नंबर वन और ने जितना का कंजर चिकेपो नास चकरा और ने कब से तने कुरे स्टीवन ए कंजर चिकेपो नासिंग न्यू आज बस सिलिंग म्यातानो आई ना म्यातानो कोरा के गेम बॉयो और ने जितने कुरे ग्रेस ग्रेस अगेन ना कहीं को आज 950 सजे मुन 50 को नेलिप चौहान एगेज इंगे निले मगर आरण के बेंडो तक 950 वैने रबी निक चगोय ग्लूस मगात को नमात को नो दिल सिंगी तभी उनको ना इले माँ चेंजनी वक को माँ बुंचनी ये को माँ बुंचने शन स्पीक आप इन कहियो जम गया भी आप कहियो वो ले मो चेंजनी हो स्टाटस 74 आज का दिन ये तको मी परोइन डंग न इने गे अमे जे जुतु चिया के तको स्टाटस 74 आज लबा तको दुगे नंबर 1 नंबर 1 रगा रगा न्योर चिके बोनस से जे के इन्यो Kongoi missing kita negi kure Vitalis Kemei engolimbo in Carnatic Farm engolimbo mlango hey MC mwenyewe no MC agwango ni haja anko habari zangu nyingi hey igatwa family nangu tukul eh ati nguno komagaki aptego agati nguno kigati chumba ingeni le inyenda tunguno aguginyo aginyewe mlango kongimi mlango kokaulota ni kaulota nenyu Lagin nunggu na aku ini endat kui cita apa cemnoi, so enggak kat pih apa cemnoi, tu kau lingko limpanan deh jamge. Angin ala gak bagas. Haiya, aku sama kita tiendangnya, nengi nasa cemun tienno taki kali naro YouTube, mangin kau tuto sanyoru, engko manyoru kau mana? Kebaya cemitu tuk. Status 74 Asha. Status 74